मन ले तुधार, ज्यो सुपनार पेखना ऐसे जग को जान, इन में कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक नारायण जय जीत। जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची काओ नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई मद माया के अंध, काओ नानक बिन हर भजन परत ताए जम फंद। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कौ नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान, कौ नानक बिन हर भजन व्यर्था जन्म सराण। जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फदर्यो विसर्यो गोविंद नाम, कौ नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध, कौ नानक हर भजन बिन परत ताए जम फंद। सुख में बहु संगी पै दुख में संग न कोए, कौ नानक हर भजमना अंत सहाई होए। जन्म जन्म पर मत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कौ नानक हर भजमना निरपय पावे वास। जतन बहुत मैं कर रयो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फलियो राख लियो भगवान। बाल जवानी अर विर्द फुन तीन अवस्था जान, काओ नानक हर भजन बिन व्यर्था सभी मान। करनो तो सुना कियो परयो लोग कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रयो निकसत नाहे नमीत, नानक मूरत चित्र ज्यों छाड़त नाहे नपीत। नर चाहत कछ औरे की औरे पई, चितवत रयो ठगोर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए, कौ नानक सुन रे मना हर पावे सो होए। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम, कौ नानक मन समरते पूरन होवे काम। झूठे मान का करे जग सुपने ज्यो जान, इन मैं कछ तेरो नहीं नानक कयो बखान। गर्भ करता है देखो भिनसे चिन में मीत, जय प्राणी हर जस कयो नानक ते जग जीत। जय कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जय प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन। स्वामी को गृह जो सदा स्वांत जत नहीं नित, नानक ए विद हर भजो एक मन हो एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरे गुमान, नानक ने फल जात ते ज्यो कुंचर इस नान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन जोतते ईन, काओ नानक ए
असलीन निज कर देखियो जगत में को काहू को नाही नानक थेर हर भगत है थे राखो मन माए जग रचना सब झूठ है जान लियो रे मीत कह नानक थिर ना रहे जो बालू की पीत राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार कौ नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यो संसार चिंता ता कीजिए जो अनहोनी होए ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं को जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कछु न होते उपाय कौ नानक अभ्योट हर गज ज्यू हो सहाय बल हो आ बंधन छुटे सब किछ होते उपाय नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए कौ न निभ्यो साथ कौ नानक विपत में टेक एक रघुनाथ नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद कौ नानक जगत में किन जप्यो गुरमंत राम नाम और मैं गयो जाके सम नहीं कोए जे समरथ संकट मिटे धरस तुहारो हो मुदावणी महला पंजवा

ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग लाभ अठो नंदन प्रथम राग पैरवे करी पंच रागनी संग उच रही प्रथम पैर भी बिलावली पुन आखी गावे बंगली पुनस लेखी की पई बारी ए पैरों की पांचों नारी पंचम हरक दिसाख सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत विलावल गावी अपनी अपनी पांत अष्टपुत भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौ सका लापे संग रागनी पांचो थापे गौंड करी अर देव गंदारी गंदारी से उत्यु चारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौ सत्संग लाई मारू मस्तवंग मेवारा प्रबल चंड कौ सकु भारा खौ खटो पौरानद गाय अष्ट माल कौ सत्संग लाए पुण्य आयो हिंडोल पंच नार संगष्ट सूत उठे तां कलोल गायन तार मिलावई तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस हिरी लै पार जा संग लाई पांचो आर जा स्वर्मानंद पास कर आए चंद्र बिम मंगलन सोहाय सरस बानो आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत मैं कहे सुवारी पुन्य आई दीपक की बारी कछेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामो दियो गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौराव कानरा कल्याणा अष्टपुत दीपक के जाना सब श्री रावे गावे पांचो संग बरंगल लावे बैरारी कर्नाटी तरी गवरी गावे आसावरी ती पाछे सिंधवी लापी श्री राग सो पांचो थापी सालू सारंग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत श्री राग के गुंड कुम अमीर खस्टम में रावे गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरड गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुनगुनी ऊचे सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग सो पांचो चीनी बैरादर गजर के दारा जबली दर नट्यो जल तारा पुन गावे शंकर यो श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दसवीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दसवीस वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुप है चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह स्यान पालक होए ता इक न चले नाल किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया ना हुक्मी होव नकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी
ਓ ਵੰਚੀ ਓ ਕੰਮ ਲੈ ਵੜਿਆਈ ਅਮੀਰ ਤਮ ਨੀਚ ਓ ਕੰਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼

चाले हम देखा थे दुबियाले मन एकन चेतास मोर मना हर बिसरत तेरे गुन गालिया रहा ना हो जती सती नाही परिया मोरक मुगत जानम जानम बारी बाया प्रणवत नानक तिनकी सरना चिनतु नाही विसारिया असमहला पंजवान पाही पर पात मानुक ते होरिया गोबन मलान की ए थारी पारिया अवर काज तेरे कीते न काम मिल सत संगत बज केवल नाम सरन जम लग भव जल थरन के जानन ब्रित चतरंग माया के रहाओ जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा सदन जानिया हर राया काहू नानक हम नीच कर्मा सरण परे की राको शर्मा एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पाठशाही दसवी काव्यो बाच बेन्ते चौपाई हमारी करो हत दे राचा पोरन होए चित की अच्छा तव चरण मान रहे हमारा अपना जान पुकारो प्रतप

सेवक सिकिया सबे कर तारा मोर चंज कर दे करिया सब बैरन को आज सिंगारिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की राह प्यासा तुम्हें छाड़ खोए अवर न दिया हूं जो बार चाहूं सो तुम ते पाहूं सेवक सिकिया हमारे थरिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया आप हाथ दे मुझे उबारिया मरण काल का त्रास नवारिया हो जो सदा हमारे पचा सिरिया सतुजू करियो रच रख ले मोय रख न हारे साहेब संत साहे प्यारे दीन बन दुष ठन के हंता तुम हो पोरी चतुर दस खंता काल पहे ब्रह्मा पुपतार काल पहे शिव जू अवतार काल पहे कर बिस्न प्रकाश सकल काल का किया तमासा जवन काल जो की शिव कियो पेद्रज ब्रह्मा जूतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है थाए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देवर दैत दचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु सिमजिया हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सिवकन को सिवकुन सुकतियो सत्रन को फल मोबाद की हो गट गट के अंतर की जानत बाले बोरे की पीर पचानत चीटी ते कुंचार सतुलक सब पर कृपा जिष्ट कर फूला संतन दुख पाहे ते दुखी सुख पाए सदान खे सुखी एक एक की फिर पचानन गट गट के पट पट की जानन जब उखराक खरा कर थारा प्रजा दरात तब दे अपारा जब अखराक करत हो कबाहुं तुम में मिले दे डर सबहुं जेते बदन शिष्ट सब डारे आप अपनी बुझ उचारे तुम सब ही तेरा हाथ निरालम जानत बेद बेद और आलम निरंकार निरखार निलंब आदा नीला नाद संभ ताका मोर उचारत बेदा चाको बेव न पावत बेदा ताको कार पहान न मत महा मोर खच बेद न जानत महान देव को कहात सदाशिव निरंकार का चिनत नाहे बेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत बिन बन तू है तेती तुम्हारा लका न जाहे पसारा के बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूप रंक पयो रव काहे पूपा अंतज चेरज से तिज खीनी उतपच खान बहुर रच दीनी कहुन फुल रजा हवे बेटा कहुन समट बायो सखार इकेटा सगरी शिष्ट दिखाहे चंबव आर जुकार स्वरूप से अंबव अब रचा मेरी तुम करो सिक उबार सिक संगारो दुष्ट जिते उठ पात उत पात सगल मलेच करो रंगाता जे अस दुज ठव सारनी परे तिनके दुष्ट जिव खट हवे मारे पुरक जावन भग फारे तिहारे तिनके तुम संगट सब ठारे जो खाल को एक बार दिया है ताके खाल निकट न हया है रच हुए थाए सब काला दुष्ट अरिष्ट ठहरे तत्काला कृपा दृष्ट ठन जाहे निहारियो ठाके ठापन ठनक मोय माहे हरियो मो हरियो रिद सिद्ध कर मुन सब होहे दुष्ट चाहे छावे सके न कोहे एक बार जिने तुम्हें संभारा काल फस थे।

हो जोया की एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत सत्रह सह हस पन्नी जय राध सहस फुन ठीन कही जय भद्राव सुदी अष्टमी रवार थीर सुद्राव ग्रंथ सुधारा सिवाय पाए गहे जब थे तुमरे तब थे कहो अंक तरे नहीं आनियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मानियो स्मृत शास्त्र वेद सब बहु वेद कहे हम एक न जानियो श्री असफान कृपा तुमरे का मैं न कहो सब थोए बेकानियो तोरा सगल द्वार को ठाट के कहो द्वार द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास थुआर राम कली मल्ला थी जानंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अनंद बया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सहज से ती मन बजिया बताया राग रतन भर वार पारिया शब्द का वनी आया शब्दोत का वो हरि केरा मन जनी वसाया काहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन भेरिया तू सदा रहो हर नाले हो तुम हन मेरे दुख